या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। With your kindness, with your fazl, with your ihsan, as a favor upon us, my beloved Allah, give us the best of dunya, the best of akhirah. We know we are deserving of your anger, your wrath, your azab, your punishment. But you don't love punishment, you don't love, my beloved Allah, destruction. Therefore we are seeking amnesty, salvation, najat. गर्चे पुर खता है पर कहा जाए तेरा बंदा, गर्चे पुर खता है पर कहा जाए तेरा बंदा, तेरे दर पर तेरा बंदा व उम्मीद करम आया। गर्चे पुर खता है पर कहाँ जाए तेरा बंदा। Although I am full of sins, weakness, shortcomings, but where do we, your slaves, go, my Allah? तेरे दर पर तेरा बंदा उम्मीद करम आया। योर स्लीव हैज कम टू योर डोर, वी आर टैपिंग एट योर डोर बाय अल्लाह। इज वेरी मोमेंट यू आर वॉचिंग अस, हाउ जेनरस यू आर, हाउ फॉरगिविंग यू आर, हाउ काइंड यू आर, how loving you are. Garche pur khata hai par kaha jaye tera banda, tere

ये दौलत ये कुव्वत ये हुस्नो अदा हवाओं की चलनी में छन जाएगा, न कुछ मालो दौलत न धन जाएगा, फकत साथ तेरे कफन जाएगा। सभी

तुझे बचपन ने पहले बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आ के क्या क्या सताया, बुढ़ापे ने फिर आ के क्या क्या सताया, अजल तेरा कर दे ये बिल्कुल सफाया।

उसका वो हो जाए मेरा, मैं हो जाऊं उसका, यही रात दिन में दुआ मांगता हूँ।

यार रहे यार अब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, मुझको फकत तुझसे हो मोहब्बत, खल्क से मैं बेजार रहूं, हर वक्त जिक्र

आशिकों का मीना और जाम है अल्लाह जल जलालू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।

कुछ नहीं उसका भरोसा, कुछ नहीं, कुछ नहीं उसका भरोसा, कुछ नहीं। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। तुझको गाफिल फिक्र उकवा कुछ नहीं, ओ यू हुआ नेग्लिजेंट, यू गॉट नो कंसर्न ऑफ द आखिर। खाना धोखा ऐश दुनिया कुछ नहीं, डोंट बी डिसीव्ड बाय दिस दुनिया। खाना धोखा, इट्स अ डिसेप्शन, इट जस्ट गिव्स यू द इंप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू लिव लॉन्ग हियर एंड यू आर एंजॉइंग एंड इट्स वंडरफुल, बट एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू कम टू एन एंड एंड देन देयर विल बी एन आखिरत, देयर विल बी अ डे ऑफ जजमेंट, अकाउंटेबिलिटी। How are we going to account for our actions and our deeds before that Allah? Zindagi chand roza kuch nahi, kuch nahi iska bharosa, kuch nahi. No trust. Where can you place trust on the dunya? It's not to be trusted, it's to be made use of. Dunya is to be made use of and not to be trusted. Has dunya been faithful to anyone? We say the faithful friend, then he remains faithful until death do him part. Now there too the death takes that person away, otherwise he would have remained faithful and trustworthy. But the world, any person who has given his heart to the world, has it been faithful? Has it been loyal? And now that you have given your heart to me, so then I will not allow you to suffer death. I will love you forever and ever. No such thing. Khana dhoka aisha dunya kuch nahi. Ek din marna hai aakhir maut hai. Ek din marna hai aakhir maut hai. Ek din marna hai aakhir maut hai. कर ले जो करना है, आखिर मौत है। सख्त सख्त

The person will not be able to give any kind of description. How can you put a description on something that is in the heart? अजम के बयाबा से मफरूर होऊंगा, गुलिस्तान तैयबा से मसरूर होऊंगा, मैं दीदार गुंबद से मखमूर।